0: हमारी web.com की पेशकश।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर रहो।
2: वो मदीना जो कौन है उनका ताज है, दुनिया की पेरिस को क्या कहते हैं, दुल्हन कहते हैं। पेरिस को क्या कहते हैं लोग, दुनिया की दुल्हन दुल्हन कहते हैं। बेकनों का ठिकाना है कौन, इनका दूल्हा मदीने में, कौन इनका दूल्हा मदीने में। पेरिस दुल्हन कैसे हो सकती है, दुनिया की दुल्हन तो मदीना। जिसने मदीना शरीफ को दिल की आंखों में देखा तो उसे फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो जब इश्क इस कदर बढ़ जाता है तो वो कहता है कि मेरी नजर को भाए दुनिया का हुस्न कैसे, मेरी नजर को भाए दुनिया का हुस्न कैसे, आंखों में बस गया है मदीना होना। एकाश दिल की आंखों से हुजूर का मदीना देखते हैं। वो मदीना जो कौन है उनका ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या। अल्लाह नसीब फरमाए, बार बार बा अदब दादी था फरमाए। ये मदीना वहां जाना तो बड़ा शर्फ की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है, लेकिन ये वो अर्ज मुकद्दस है कि मलाइक लगाते हैं आंखों में अपने शबो रोज खाके मजारे मदीना। और ये वो मुकद्दस

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: मिल जाता तो फोर्स 100 गुना ज्यादा उनको तेजी से आगे ले जाते। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे, तो बादशाह 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर रहे हैं प्लान में, तो जो मर्जी निकाल रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल मजबूर यादव अपना टाइम पूरा करेंगे।
6: मौजूदा निज़ाम केॾां बि न पियो वञे, हुकूमत पंहिंजो आइनी मुदो पूरो कंदी ऐं शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहंदो। अॼु बि इन ॻाल्हि ते क़ाइम आहियां त निज़ाम बिल्कुलु तबाह थी चुको आहे। माण्हुनि जी ख़्वाहिश आहे त वज़ीर आज़म ऐं मुंहिंजा लाॻापा ख़राब थी वञनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जूं इस्लामाबाद में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो त वज़ीर आज़म 14 खां 16 कलाक कमु करे रहियो आहे। शहबाज शरीफ़ खे सिस्टम ठीकु मिले हा त मुल्क खे 100 भेरा तेज़ीअ सां अॻिते वठी वञे हा। वज़ीर आज़म खे मशवरो ॾिनो वेंदो त सभिनी वज़ीरनि जी कारकर्दगीअ जो जाइज़ो वरितो वञे। वज़ीरनि

0: कारकर्दगी जो जाइज़ो का टी दौर वठे पोए रिपोर्ट अवाम अगे रखी वे।
1: मुल्क में नवन इंतजामी यूनिट्स वे मामले ते पूरी संजीदगी सभी रुकन के नजर आडो रखे गौर किया वे तो जी कौमी घुर्जन जरूरत मुताबिक हतमी फैसले से पोचण मुमकिन थी सके। नए इंतजामी बंदोबस्त का भी फैसले का पर्या कौमी इतफाक राय जरूरी है। मौजूदा हालतू एक मजबूत ए मुस्तकम वफाक के घुर्ज कन थियन के रूहानी पेशवा पीर पागारे जो नवन इंतजामी यूनिट्स बाबत बयान सामू अची वो। पीर पागार मरकाए हक में जिलत वाली शख्सत का भारत इसराइल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हथी

0: सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध पुलिस जा आफ़ीसर तोड़े जवान दहशतगर्दनि ॾोहारनि ऐं समाज दुश्मननि ख़िलाफ़ ॼमी बीठल आहिनि। शहीदनि अवाम जी जान ऐं माल जे तहफ़ ऐं कानून जी हुकमरानी लाइ जानियूं क़ुर्बान कयूं। पुलिस जी बहादुरी साबित कयो त अमुन कानून ऐं अवाम जे तहफ़ लाइ हर ख़तरे जो मुक़ाबिलो कयो वेंदो। कराची में पुलिस जे शहीदनि जे ॾिहाड़े जे मौके ते तकरीब खे ख़िताब कंदे मुराद शाह चयो त शहीदनि जा ख़ानदान बि क़ुर्बानी ॾींदा आहिनि, उहे पाण खे अकेलो न सम्झनि। सिंध हुकूमत तोड़े पुलिस उन्हनि सां गॾु आहे। सिंध पुलिस खे ॾोहनि जे ख़ात्मे ऐं कानून लाइ सभई घुर्बल वसीला फराहम कया पिया वञनि।
1: ईरान सरहदी हिजण तोड़े 24 कलाक सरहद खुलियल रखण लाइ सहूलियतूं वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। बहितर लॉजिस्टिक ऐं कस्टम तरीक़ेकार में बि अहम आंगी आणण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म सां ईरान जे वापार वारे वज़ीर सैद मोहम्मद अताबिक जे सरबराही में 6 रुकनी वफ़द जी मुलाक़ात। शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में अमुन लाइ पंहिंजूं मुख़लिसाणियूं कोशिशूं जारी रखंदो। ईरानी सदर सां ताज़ो ई ख़िते में अमुन जे क़याम ऐं पाक ईरान गागापन ते सुठी ॻाल्हि ॿोल थी। पाकिस्तान पंहिंजे बहितरी पाड़ेसरी ब्रादर मुल्क ईरान सां लाॻापन खे क़दुरु जी नज़र सां ॾिसे थो। उमीद आहे त पाकिस्तान ईरान विच में $10 अरब जी बतरफ़ी वापार जो हदफ़ हासिल कयो वेंदो। ईरानी वज़ीर सैद मोहम्मद अताबिक पाकिस्तान जे सफ़ारती कोशिशुनि जी वाखाण कंदे चयो त ईरान पाकिस्तान सां इक़्तिसादी वापारी लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे। ईरान ऐं उमान विच में आबनाए हुर्मुज़ बाबति मुआदो थी वियो। ईरान तस्दीक करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाइत जो चवण आहे त ईरान ऐं उमान विच में आबनाए हुर्मुज़ मां जहाज़नि जी जाग्राफ़ी हदनि बाबति मुआदो थी वियो आहे। इम्कानी ट्रांज़िट रोट 2 खां 4 महीननि लाइ क़ाबिल अमल थी सघे थो। मुआदे बाबति जल्द गजल पधरनामो जारी कयो वेंदो। अमरीकी मीडिया जो चवण आहे त मुआदे तहत आबनाए हुर्मुज़ में 60 ॾींहं लाइ आज़ी इंतज़ाम कयो वेंदो। 60 ॾींहं लाइ को बि टूल टैक्स या फीस न वरिती वेंदी।
0: पाकिस्तान पारां वालाल बैतुल मुक़दस में इसराइली क़दम जी मज़म्मत इसराइली कब्ज़े जे नापाक मक़सदनि खे क़बूल न करण जोॻो करार ॾेई छॾियो। फलस्तीन जी आज़ादी लाइ अरब ऐं मुस्लिम मुल्कनि खे गॾिजी कम करण ते ज़ोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उर्दन में वज़ारती इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त वालाल बैतुल मुक़दस में इसराइली क़दम आलमी क़ानूननि जी भञकणी आहिनि। हू मस्जिद अक्सा में इंतिहा पसंद इसराइलनि जे मदाख़लत जी मज़म्मत कनि था। पाकिस्तान इसराइल पारां गैर क़ानूनी आबादकारनि ऐं फलस्तीनी इलाइक़नि ते कब्ज़े खे रद्द करे थो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: यार कुछ ॾींहनि खां जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
5: त पोइ तूं फ़क़्तो करीं?
4: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
5: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी, सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
4: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
5: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
4: इस्तेमाल कीअं कजे?
5: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा

0: टीम इस्तेमाल किए कजे
1: रुगो मुतासिर हंदते डीएम ट्रेखा चार भेरा नरमी सा लगाए आराम जो एहसास वच बुध जेकरे उमरे या हजते वनन जो इरादो अथई त फकीरी एनल जैसे क्रीम जरूर पान सा गड खणी वंजा
0: वाह पोए अजी वठींदस
1: फकीरी एनल जैसे क्रीम अडी पांजी वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो
2: छा अवां जी स्किन रेडियो एक नओ सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मामाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हां जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हा ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी लाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी ये yeah!

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक Al Habib. रिश्ता भरोसे का.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN.
5: या आपने बहुत जीत की, मेरी सिंह आपकी तरफ से किधर चले गए? इतनी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम की और मिल जाता तो वो 100 गुना ज्यादा इस मुल्क को तेजी से आगे ले जाते. हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे, उसके बाद 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे. ये जो मर्जी कर रहे हैं बयान में से जो मर्जी निकाल रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वजीर आजम.
6: मौजूदा निज़ाम कहना भी न पियो वञे, हुकूमत पंहिंजो आइनी मुदो पूरो कंदी ऐं शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहंदो. अजमेर इन ॻाल्हि ते क़ाइम आहियां त निज़ाम बिल्कुल तबाह थी चुको आहे. माण्हुनि जी ख़्वाहिश आहे त वज़ीर आज़म ऐं मुंहिंजा लाॻापा ख़राब थी वञनि. वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जूं इस्लामाबाद में साफ़िन सां ॻाल्हियूं. मोहसिन नक़वी चयो त वज़ीर आज़म 14 खां 16 कलाक कम करे रहियो आहे. शहबाज शरीफ खे सिस्टम ठीक करणु मिले हा त मुल्क खे 100 भेरा तेज़ीअ सां अॻिते वठी वञे हा. वज़ीर आज़म खे मशवरो ॾिनो वेंदो त सभिनी वज़ीरनि जी कारकर्दगीअ जो जाइज़ो वरितो वञे. वज़ीरनि जी कारकर्दगी जो जाइज़ो काटरी धुर वठे ऐं पोए रिपोर्ट आवाम अॻियां रखी वञे. पाकिस्तान ऐं ईरान सरहदी वापार खे हथी ॾियण तोड़े 24 कलाक सरहद खुलियल रखण लाइ सहूलियतूं वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो. बहितर लॉजिस्टिक ऐं कस्टम्स तरीक़े में बेहमांगी आणण ते इतफ़ाक़. वज़ीर आज़म सां ईरान जे वापार वारे वज़ीर सरबराही में 6 रुकनी वफ़द जी मुलाक़ात. शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमुन लाइ पंहिंजियूं मुख़्तसाणियूं कोशिशूं जारी रखंदो. ईरानी सदर सां ताज़ो ईरान पंहिंजी बहितरीन जी नज़र सां ॾिसे थो. उमीद आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान विच में $10 अरब जी ॿतरफ़े वापार जो हदफ़ हासिल कयो वेंदो. ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद पाकिस्तान जी सिफारती कोशिशनि जी वाखाण कंदे चयो त ईरान पाकिस्तान सां इक़्तिसादी ऐं वापारी लाॻापनि खे वधीक हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, बुलंद रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो ले।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा.
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ.
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश.
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट.
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है.
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्टों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद.
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं.
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार.
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: स्टैनफोर्ड इज
1: ब्रॉडफॉल अस्करी
2: जिसे बचाव का
3: बेहतरी नींद सॉप
2: जल्दी खारिश के लिए
3: नींद पिघली
2: की महा कर्मी दानों से
3: हीरी नींद कुदरत
2: फकीरी
3: गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने आसिफ और बदबू को नींद टॉप
2: हर
4: जिंदगी गुजारी डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल रोजानो सुबह 9:55 ते एफ नेटवर्क
5: अभी बुझिए हैदराबाद FM 91.6 जो आवाज बुदंदा रहो
6: हमारे जिस्म तो जुदा हो।

0: जब तक तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई आग।

0: पहले उसके भाई को मारा है तुमने।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: नहीं मिलेगी, खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: खाने को तोड़ ना चाहता है। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी।
1: दिल से तो नहीं निकल सकते, जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
5: ईरान में एक दुर्गालीन ऐं ॿी जंग जारी रखण जी हामी आहे। अमेरिकी नायब सदर जी दावा जीडी वेंस चयो आहे त ॻाल्हियुनि ऐं छिकताण वारे अमल में सूरतयाल हेठि मथे थींदी रहंदी आहे। जेको बि थींदो अमेरिका आवाम जे हक़ में ई थींदो। वज़ीर आज़म ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो थींदो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म सऊदी वहद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात कंदो। मुलाक़ात में पाक सऊदी अरब जे लाॻापन ऐं किथे ॻाल्हियूं थींदियूं। मौजूदा निज़ाम केॾांहुं बि न पियो वञे। हुकूमत पंहिंजो आइनी मुदो पूरो कंदी ऐं शहबाज़ शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहंदो। अॼु बि न ॻाल्हियां त तबाह थी चुको आहे। माण्हुनि जी ख़्वाहिश आहे त वज़ीर आज़म ऐं मुंहिंजा लाॻापा ख़राब। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन सां ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो आहे त वज़ीर आज़म 14 खां 16 कलाक कम करे त मुल्क खे 100 भेरा तेज़ीअ सां अॻिते वठी वञे हा। वज़ीर आज़म खे मशवरो ॾिनो वेंदो त सभिनी वज़ीरनि जी कारकर्दगीअ जो जाइज़ो वरितो वञे। वज़ीरनि जी कारकर्दगी जो जाइज़ो कार्टरी धुर वठे ऐं पोइ रिपोर्ट अवाम अॻियां रखी वञे। काज़ी अहमद में पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबिलो। पुलिस अहलकार शहीद ऐं हिकु फोरन मारिजी वियो। पुलिस मौजूदु पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबले दौरान पुलिस अहलकार पीर मोहम्मद हुसन खोसो शहीद थी वियो। ॾोहारी गुलाब शाह बि मारिजी वियो।
6: आज़ादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आज़ादी ऑफर।
5: जहिड़े जो इम्कान वाके बाद मुख्य जवाबदार सदाम शाहणी ऐं ॿिया घर खाली करे फरार थी विया। पुलिस जवाबदारनि जा घर ढाहिण जो कम शुरू करे छॾियो। सिंध हाईकोर्ट जो मलीर मागवा थियल 4 वरनि जी बालीअ खे 12 अगस्त ताईं बाज़ियाब कराइण जो हुकुम। शाहीन बीबी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त 4 साल अॻु मुड़ुस सरदार अली खां ख़ुलाह वरिती हुई। अॻूणे मुड़ुस ऐं संदसि माइट धीअ सूदो अगवा कयो हो। पुलिस मूंखे बाज़ियाब करायो पर न्याणी अञा ताईं न मिली आहे। अदालत SSP मलीर खे 6 ॾींहनि अंदरि बालीअ खे बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾिनो। ऐं अमेरिकी सदर जो डेमोक्रेटिक अॻवान अब्दुल सईद ते यहूदी ऐं इसराइल सां नफ़रत जो इल्ज़ाम परॾेही मीडिया मूजिबि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त सेनेट जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी फतेह अब्दुल सईद नफ़रत सां भरियल आहे। हू यहूदी ऐं इसराइल सां नफ़रत कंदो आहे। मीडिया रिपोर्ट सां अमेरिका में इसराइल नवाज़ तंज़ीम डॉक्टर डेमोक्रेटिक प्राइमरी खे हाराइण लाइ $32 मिलियन ख़र्च कया हुआ।
4: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।
7: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छॾी आहे। हलण विहण हर कम ॾुखियो लॻे थो।
8: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी NL जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
7: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
8: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तयार कयल फ़क़ीरी NL जैसे क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी सूर सोडियम जिस्म जी नस ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोॾनि जो सूर, कंध ऐं कुलनि जी तकलीफ़ या वर्ज़िश खां पोइ छिक, हर हालत में बहितरीन साथी फ़क़ीरी NL जैसे क्रीम।
7: इस्तेमाल कीअं कजे?
8: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3 खां 4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध। जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फ़क़ीरी NL जैसे क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा।
7: वाह, पोइ अॼु ई वठींदसि।
8: फ़क़ीरी NL जैसे क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
9: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना,
2: खाओ मेरी कसम तुम उसके बारे में नहीं सोचो।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: तो अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींच उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
4: अच्छा

0: अच्छा तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।
2: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो। अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता दे
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: आना है और आने के बाद आपको मिलेगी इस पेज के ऊपर पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग
1: आर्थो हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन
0: मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, इसके ऊपर कॉल की जा सकती है। ठीक है, तो कॉल कीजिएगा और मुझे बात कीजिएगा। और इसी के साथ साथ हम लेने जा रहे हैं शो की फर्स्ट कॉल और चेक करेंगे कि जी कॉनर कहाँ से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: वकार
0: लारकाना। वकार लारकाना से कैसे, ठीक ठाक?
2: रुखसार भाई,
0: रुखसार भाई बहुत अच्छे। मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: हम आपका बड़े शौक से, लाड प्यार से सुनते हैं।
0: तो
2: मेहरबानी,
0: बस ये रहा आपका गाना, थैंक यू सो मच। और गाना सुनते हैं, गाने के साथ साथ कॉल्स को एंटरटेन करेंगे।

0: हल्की है मैम।
1: जल्दी से सुना दे।
0: जल्दी क्यों, बंद हो जाएगा?
1: नहीं नहीं, मतलब जल्दी से सुना दे, मुझसे सबर नहीं हो रहा।
0: आज जो कुछ जो एक चर तुझको, एक चर तुझको मैं समझ के बुला देता हूँ।

0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

मोहब्बत जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
2: GFM 91.6।

और आगे चलेंगे तो जी ये वाला नहीं सेकंड हम ये वाला और इसको सुनेंगे और आएंगे न्यूज़ बाय कमर्शियल ब्रेक दोनों के बाद गुलजार है

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
1: करेवरतो ईरानी पर वजारत तस्दीक कर छी। तरमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमेरिका मुआहदे जो गॾियल बदरनामो तयार करे रहिया आहिनि। टीं धुरी मुदाख़लत ते मामलो ख़राब बि थी सघियो। ईरान खिलाफ़ जंग लाइ हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई थी आहे। अमेरिकी सदर ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर ते नाराज़। अमेरिकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट मूजिब सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप ख़बरुनि जी तरदीद करे छॾी आहे। चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। पकड़ंदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे। ईरान में हिकु धुर ॻाल्हियुनि ऐं ॿी जंग जारी रखण जो हामी आहे। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त ॻाल्हियुनि ऐं छिकताण वारे अमल में सूरतहाल हेठि मथे थींदी रहंदी आहे। जेको बि थींदो अमेरिकी अवाम जे हक़ में ई थींदो। ओमान वेझो आबना हर्मुज़ में ॿिनि ऑयल टैंकर्स में धमाका। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी मूजिब बहरी ॿेड़नि में धमाका ओमान वेझो थिया आहिनि। वधीक तफ़सील न आहिनि मिलिया। काज़ी अहमद में पुलिस ऐं फोरन विच मुक़ाबिलो। पुलिस अहलकार शहीद, हिकु फोरू बि मारिजी वियो। पुलिस मूजिब पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबले दौरान पुलिस अहलकार पीर मोहम्मद हसन खोसो शहीद थी वियो हो। ॾोहारी गुलाब शाह बि मारिजी वियो। ॾोहारी मुख़्तलिफ़ केसनि में घुरबल हो। वधीक जांच जारी आहे। सिंध हाई कोर्ट जो मलीर मां अगवा थियल 4 वरी जे ॿारड़ीअ खे 12 अगस्त ते बाज़ियाब कराइण जो हुकुम शाहीन बीबी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त 4 साल अॻु मुड़ुस सरदार अली खां खुला वरिती हुई। अॻूणे मुड़ुस ऐं संदसि

0: दादू वेझो शाहानी बिरादरी में जेड़े दौरान कतल थियल टिन जणनि जे हथियारनि जे पहिरे में तदफीन मुज़फ़र रब नवाज़ ऐं खादिम शाहानीअ जे जनाज़े निमाईंदड़ धुरिन जा ॻोठ वेझो हुअण सबबि ॿीहर जेड़े जो इम्कान वाके बाद मुख्य जवाबदार सदाम शाहानी ऐं ॿिया घर खाली करे फरार थी विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
4: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां हासिल करियो फकीचमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी।

0: एप्लीकेशन के थ्रू देखा जाता है, यानी उसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर कोई तहकीक ऐसी है कि जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते या वो आपकी मॉडर्न इंडस्ट्री को फायदा नहीं दे सकती, उसे इतना अहम नहीं समझा जाता, बल्कि फंड्स हासिल किए जाते हैं इंडस्ट्री से ही और फिर वो फंड्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अपनी तहकीक करें, इतना अरसा आपके पास है और फिर हमें रिजल्ट्स दें। तो ये अमल जो है ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक और बड़ी कामयाबी जो है वो डिजिटल जो जरई निजाम है उसका कयाम है, यानी उसको डिजिटलाइज आप कैसे कर सकते हैं कि अब पाकिस्तान में भी ये काम कुछ सतहों पर हो रहा है, यानी किसान अब मोबाइल फोन के जरिए मौसम देख लेते हैं, मार्केट के नर्ख देख लेते हैं, बीमारियों की पेशगोइयां देख सकते हैं और फिर जरिए माहिरीन की मुशावरत हासिल कर सकते हैं। तो कुछ हिस्सों में पाकिस्तान के अब ये सारे काम थ्रू एप्लीकेशन हो रहे हैं। बाज़ इलाकों में मस्नूई ज़हानत जो है वो फसल की तस्वीर का तज्जिया करके भी बीमारी की निशानदेही करती है और फौरी इलाज तजवीज़ करती है। इसी तरह जो फैसले हैं वो अब अंदाजों के बजाय दुरुस्त आदाद शुमार की बुनियाद पर किए जाते हैं। 2025 की हम बात करें तो मौसम की बाज़ मुश्किलात के बावजूद चीन की जो गर्मियों की फसल की फी हेक्टर पैदावार थी वो तकरीबन 5634 किलोग्राम रही, मैं फी हेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिससे जाहिर होता है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने जो मौसमियाती चैलेंजेस थे उसके बावजूद पैदावार को मुस्तहकम रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और हालिया वर्षों में जो स्मार्ट फार्मिंग है उसको भी बहुत फरोग मिला है और नेशनल लेवल पर डिजिटल ज़राअत का मंसूबा भी शुरू किया गया है, जिसके तहत मस्नूई ज़हानत को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बिग डेटा को, सैटेलाइट नेविगेशन को और जदीद मालूमाती निज़ाम को पूरे ज़रई शोबे में वसत दी जा रही है ताकि जो खुराक की पैदावार में मजीद इजाफा हो और वसाइल का मौसर इस्तेमाल भी मुमकिन बनाया जा सके। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ भी ज़राअत मईशत का एक अहम सुतून है, मगर अभी तक बेशतर किसान रिवायती तरीकों पर इन्हिसार करते हैं। फिर पानी की कमी है, मौसमियाती तब्दीली है, कम पैदावार है, जदीद मशीनरी की महदूद दस्तयाबी है, फिर मयारी बीजों की कमी है और फिर ज़रई तहकीक हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है। तो ये तमाम चीजें ज़रई तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर रही हैं। चीन का तजर्बा पाकिस्तान के लिए कई अहम असबात रखता है। यही वजह है आपने देखा कि एक प्रोग्राम शुरू किया गया पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जिसमें 1000 ज़रई माहिरीन को चीन भेजा गया मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी 200-250 फिर 200-250-300 ऐसे करके, और उन तमाम लोगों को जब यहाँ भेजा गया तो मकसद ये था कि वो आकर यहाँ पर चीन में जो ज़रई तहकीक है उसे देख सकें, यहाँ पर काम करने को तरीका जो तरीका है उसे देख सकें, कैसे आप स्मार्ट इरिगेशन से, ड्रोन टेक्नोलॉजी से पानी की बचत कर सकते हैं, फसलों को बेहतर कर सकते हैं और फिर यही काम आगे बढ़कर किसानों को फिर जदीद मशीनरी आसान इकसात और हुकूमती मुआवनत के साथ अगर फराहम की जाए तो वो भी ज्यादा बेहतर होगा। और फिर हमने मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो बात की वो अब किसी हद तक पाकिस्तान से शुरू हो गया। तो कई जो हमने फैक्टर्स गिनवाए थे चीन की ज़राअत में डिजिटलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के हवाले से, उसमें से अगर मैं समझूं तो शायद किसी हद तक सैटेलाइट सिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और मार्केट के जो नर्ख हैं उसके अलावा पाकिस्तान में हम उस तरह से काम नहीं कर रहे जो प्रोडक्शन लेवल पर होना चाहिए था, बीजों के हवाले से, मशीनों के हवाले से, ड्रोन्स के हवाले से। पाकिस्तान और चीन का जो ज़रई तआवुन है वो मुख्तलिफ सतहों पर फिलहाल जारी है। चीन की जामियात में, तहकीकी इदारों में और ज़रई कंपनियों में पाकिस्तानी इदारों के साथ तआवुन होता है। उसमें बीज, काश्तकारी, पानी के बेहतर इस्तेमाल और ज़रई तबीयत के शोबों पर बात हो रही है, लेकिन इसको मजीद तेज होने के साथ साथ ये ज़रूरत है कि जो कुछ हासिल किया गया है यहाँ रहकर उन लोगों ने वो वापस जाकर उसको बेहतर तौर पर डिलीवर कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लोग यहाँ आ तो जाते हैं, वो यहाँ देख भी लेते हैं, लेकिन जब वो वापस अपने मुल्क जाते हैं तो उनको वो हालात मैसर नहीं होते कि वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो नतीजा ये होता है कि एक एक्सपोजर तो हासिल हो जाता है लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, क्लोज करें, तो एक बड़ा ज़रई तरक्की के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई एक मशीन या कोई एक मंसूबा उसका नतीजा ये तरक्की नहीं है चीन की, बल्कि एक مسلسل تحقیق ہے، مسلسل جاری رہنے والی حکومتی پالیسی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا بار بار شامل ہونا ہے، پھر کسانوں کی تربیت ہے، اور پھر مضبوط منصوبہ بندی خاص طور پر اگر میں بات کروں کہ پلاننگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ چین دنیا بھر میں اپنی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں بڑی تیزی سے کامیابی حاصل کر رہا ہے.
1: اوکے جی، تھینک یو سو مچ احتسام ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور ایک بہت اچھی امپیکٹ فل کانورسیشن کے لیے. تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، جس کا نام ہے ہرا بھرا پاکستان. اور ہرا بھرا پاکستان جس میں ہمارے ساتھ موجود ہے احتسام. سو اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک جس کی طرف ہم جائیں گے. اینڈ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک سندھ کی آواز.
2: پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز. It's 12:30 PM. This sound check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرش اپنائے. آرش بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرش بیوٹی کریم.
2: اگر خوبصورتی کھپے تو آرش اپنایو. آرش بیوٹی کریم ایلوویرا ایوکاڈو اوہاں جی سینسیٹیو اسکن کے اندر کھان ریپیئر کرے صرف 3 دن میں. ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز گھٹائے، اسکن کے بنائے ریڈینٹ اسپارکلنگ ائی شاندار میریکل گلو. قدرتی چمک ائی نکھار جو بہترین انتخاب آرٹس بیوٹی کریم. اب پروڈکٹ بائی آغاز انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ.
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیٹس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو.
4: تمام خوابن جو گھر ایک اہڑی جائے تھے ٹھائن چاہیے تھا جتے ہو جائے تحفظ جدید سہولتوں منظور تھل سیکورٹی
5: تپوئے بھلی کار حسینی منزل ہاؤسنگ اسکیم سکھر میں
4: سکھر شکار پور روڈ تھے
5: ڈاکٹر ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی جی بالکل سامنے
4: سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پارا منظور تھل.
6: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. سندھ جو آواز.

योगी जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. एक गदर ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आप लोगों के जो कि मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, जिनको हम बताओ जल्दी जल्दी इंक्लूड करते जाएंगे. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैशअप सॉन्ग. ओके, अच्छा हमें कमेंट रिसीव हुए हैं स्मार्ट किशोर, कहते हैं सलाम सिस, वालेकुम असलाम, कैसी हैं आप? आई होप बिल्कुल ठीक खुश होंगी, है ना. वैसे कल मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो लास्ट लिंक में कोशिश करूंगा सुनने की और रिकॉर्ड भी करूंगा, और उसको रात 12 बजे सुनाऊंगा. बस आप अच्छे से विश करना प्लीज. चलें, डन हो गया, हम विश करते हैं जी, और बहुत अच्छे तरीके से विश करेंगे आपकी वाइफ को, नहीं सॉरी हमारी भाभी को. अच्छा, इसके अलावा गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आपके स्कूल भी खुल गए हैं और बारिश के बाद नेटवर्क इश्यू था तो शामिल प्रोग्राम नहीं हो सकी रुखसार. अच्छा ये बात है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं है.

योगी जी के साथ साथ हम एक और गाना प्ले करेंगे और गाने के साथ साथ हम चलेंगे आगे और जी आगे चलेंगे हम

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान DFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अच्छा मारन का परेशान आयो पेश आहे आर्ट क्रीम हेयर कलर पंजे पसंदीदा रंग सा पंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश ऐं वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या की खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट क्रीम हेयर कलर सा पंजे शख्सियत में आयो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताजगी अॼु पंजे वेझे स्टोर तां आर्ट क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्ट।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
2: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
2: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
2: न अदा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध ऐं चेल जी तकलीफ सट धक लगण पुराणनि जख़्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे
3: इस्तेमाल कीअं कजे
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो जी हा फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
4: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

भाभी हमेशा हंसी रहे और सॉन्ग बिल्कुल आखिरी था। अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बेस्ट विशेस की बात हो रही थी तो उस्मान किशोर जिनकी वाइफ का बर्थडे है, तो हम भाभी को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे कहेंगे और हम दुआ करेंगे कि आप दोनों साथ में हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें और क्या, और ये के ज्यादा लड़ा मत करें, थोड़ा सा लड़ा करें ठीक है, थोड़ा सा लड़ना जरूरी होता है, और हंसते रहें मुस्कुराते रहें हमेशा। और इसके माँ किशोर भाई से कहूंगी कि भाई अच्छा सा गिफ्ट देना आपकी जिम्मेदारी है, बेस्ट विशेष का काम मैंने कर दिया है, गिफ्ट देने का काम आपका है अब, और फिर मुझे पता चलना चाहिए कि गिफ्ट आखिर था क्या। ठीक है फिर मजा तो तब आएगा। और इसके अलावा जी मैसेजेस रिसीव हुए हैं नदीम अली शेख फ्रॉम रोड़ी से हमें सुन रहे हैं, जी आरजे रुखसार के सीओ अच्छी यू जी, बारिश सॉन्ग सुनाओ घर से निकलती ही कुछ दूर, कहते हैं कि डेडिकेट टू मुंतजर मुताहिर और वहीद अली को। ओके इसके अलावा सफदर बलोच ने हमेशा की तरह मुझे शेर लिख भेजा है, थैंक यू सो मच।

0: खुशी तेरी।
1: माँ किशोर थैंक यू सो मच आपका भाई। इसके अलावा आशिक खास के लिए हमें सुन रहे हैं प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमारे साथ कौन मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद थे नूर हुसैन तुनियो, हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच आपका भी।

0: फसाना हुआ, वो जो उलझा था वैसी हवा से
1: नौशहरों।
2: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
4: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
5: Fakiri Dex Ointment.
6: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
5: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
7: Ab aap sunenge GFM network par KTN News.
8: ओमान में जो आबना हरमुज में बिन ऑयल टैंकर्स में धमाका, बरतानवी मेरी टाइम एजेंसी मौजूद बहरी बेड़न में धमाका ओमान वेझो थिया आहिनि, वधीक तफ़सील नाहिन मिलिया। थर में 175 अरब टन कोयले जा ज़खीरा मौजूद आहिनि, पाकिस्तान मैदनी वसीलनि सां मालामाल आहे पर घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमाल नाहिन थियूं। मैदनियात जे शोबे जी तरक़ी लाइ सीड़पकारी टेक्नोलॉजी ऐं बहितर पॉलिसियुनि जी ज़रूरत आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस 2026 खे ख़िताब। वॾे वज़ीर चयो त थर जा ॿिए ब्लॉक गॾिजी लॻभॻ 2640 मेगावाट बिजली पैदा करे रहिया आहिनि। मक़ामी कोयले जे इस्तेमाल सां पाकिस्तान खे सालियानो 1.5 अरब डॉलर जी बचत थी रही आहे। पाकिस्तान में कोयले, ट्रामे, सोन ऐं नायाब मैदनियात जा वसी ज़ख़ीरा अञा गैर फ़ाल आहिनि। आलमी तब्दीलीअ जो हिसो बणजण लाइ पाकिस्तान खे अॼु खां ई सलाहियतूं पैदा करणियूं पवंदियूं।

एफआईआर घुर्जे न वधीक एक्शन कम थिए या न वकील के थाने में इज्जत मिलण घुर्जे। चकवे जो पुराने तकरार तां बिन धुरिन में झेड़ो एक जणो कतल, कोट शाहू थाने जी हद में शींह ए उमर शकाणी जतोई जे धुरिन में झेड़ो थियो। धुरिन जी एक बे मथा फायरिंग, मोहम्मद मुसाफुर रेसाक जतोई मारजी वयो। मारजी वयल जो लाश खानपुर अस्पताल मुंतकिल, धुरिन में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। काजी अहमद में पुलिस ए फोरन विच में मुकाबलो, पुलिस अहलकार शहीद, एक फोरू भी मारजी वयो। पुलिस मौजूद पुलिस ए फोरन विच में मुकाबले दौरान पुलिस अहलकार पीर मोहम्मद हसन खोसो शहीद थी वयो। डोहरी गुलाब शाह मारजी वयो। डोहरी मुख्तलिफ केसन में घुर्बल हो, वधीक जांच जारी आहे। सिंध हाईकोर्ट जो मलीर मां अगवा थियल चयन वरियनि जी बारड़ीअ खे 12 अगस्त ताईं बाज़ियाब कराइण जो हुकुम। शाहीन बीबी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त 4 साल अॻु मुड़ुस सरदार अली खां ख़ुला वरिती हुई। अॻोणे मुड़ुस ऐं संदसि माइटनि धीउ सूधो अगवा कयो। अदालत SSP मलीर खे 6 ॾींहनि अंदरि बारड़ीअ खे बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾिनो। दादू वेझो शाहणी बिरादरीअ में झेड़े दौरान कतल थियल 3 ॼणनि जे हथियारनि जे पहिरे में तदफ़ीन। मुज़फ़र रब नवाज़ ऐं खादम शाहणीअ जे जनाज़े नमाज़ बाद तदफ़ीन कई वई। झेड़ींदड़ धुरिन जा ॻोठ वेझो हुअण सबबि ॿीहर झेड़े जो इम्कान। वाके बाद मुख्य जवाबदार सदाम शाहणीअ ऐं ॿिया घर खाली करे फरार थी विया। सिराणे वेझो बासर पारां चोरी इल्ज़ाम हेठि पकड़ियल 2 ॼणनि ते बदतरीन तशद्दुद ऐं तज़लील। वीडियो वायरल, सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल थी वई। ॻोठ भगड़ा मेमण में ट्रांसफार्मर चोरी थियण जे इल्ज़ाम हेठि वली मोहम्मद मला, मोला बख़्श ऐं अली मोहम्मद महेंद्रो ते तशद्द

0: करे तज़लील कई वई। वीडियो वायरल थियण बाद सियासी समाजी धुरियुनि पारां वाके जी मज़म्मत इख़्तियारनि खां नोटिस वठण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matiari, FM 91.6, Sindh Jo Awaaz.
4: Oh, pita ja pitai, pita te.
5: तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिब दंदला तमाम खूबसूरत मासूमी सोने समात हूँ मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दो के समान गए चाहतों की बात लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नहीं से जाकर जमीन से आसमान जिंदगी से मोर सांस दर्दों से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण बहरापुर मतली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सुना प्रोग्राम में व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखते आ रहे हैं। जनाब अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि खूबसूरती हमें कैसे मिलने वाली है, तो खूबसूरती जो है ना वो इतनी अच्छी वाली आपको मिलेगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान वाह मजे आ गए। क्योंकि अक्सर तौर पर देखा जाए अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इस टाइम में यानी कि ये जो इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी चल रही है हर किसी की, तो इसमें खूबसूरत बनना जो है ना वो बहुत ज्यादा आसान काम हो चुका है। और जबकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा आसान काम के साथ साथ एक और मसला भी आ जाता है कि आप लोगों को पता नहीं होता कि आपसे कौन से जो ना प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करने के बाद आप लोगों को अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि भाई हमारी खूबसूरती तो हमें मिल जाए, लेकिन वो खूबसूरती जो मिले तो वो अच्छे वाले प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दी में हमें गोरा बना दे, बाद में बहुत सारी साइड इफेक्ट आपके चेहरे पर छोड़ दे। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो वो कैसे मुमकिन है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को कमेंट खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे। और यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग मौजूद है उन तमाम लोगों से जनाब उनके हाल चाल भी पूछे जाएंगे। सो डियर लिसनर्स अंत की फहालत उनके से ही आपकी हालत उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करी होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक। यानी तो यहाँ पर ना ऐसा होगा कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले हैं और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार, जो मैं किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आने सुनी लिए हैं। तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल आने का काम कर दी भैया सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा सा कसीदा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही मुखातिब आप लोगों से होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

वो आप सोच कर ये समझते हैं या फिर ये सोचते हैं कि भाई ये आखिर निकनेम हमें क्यों ही दिया गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे निकनेम्स हमारे ऊपर रखे जाते हैं जो शायद हमारी पर्सनैलिटी को देकर रखे जाते हैं, या तो आप वो नाम जो है आपके ऊपर सूट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आज आप अपना निकनेम बताएंगे जो कि आपको लगता है कि ये बहुत फनी है और लोग आपको इस नाम से पुकारते हैं। ओके जी, इसके अलावा यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइएगा। उससे ये फायदा होगा कि आप बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाते हैं और वहां से नाम लेकर तलब करते हैं। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नंबर मौजूद होना चाहिए और नंबर है जनाब 0332738439, 0332738439 और 0025907 03125025907। ये नंबर आप जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए डायल कर सकते हैं। नंबर के ऊपर कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि भाई आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। चलिए जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, पोस्ट को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अच्छा, यहाँ पर अली रजा हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहते हैं प्यारे भाई जान को। आदिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं कि लोग रोजाना इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं मगर हम फिर भी खुद को हमेशा जिंदा रहने वाला समझ बैठे हैं। हर जनाजा जिंदा लोगों के लिए एक खामोश नसीहत है कि अगली बारी किसकी भी हो सकती है, इसलिए अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें, दिलों को साफ रखें और नेकी का रास्ता अख्तियार करें क्योंकि मौत कभी दस्तक देकर नहीं आती। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी है। और जाम तालिब सोलंगी हमें सुन रहे हैं मोरो से, आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अदी तवाजो प्रोग्राम बुध पया अदी तवा शमन जो गानो बुधाईंदा तो मेहरबानी थी। बिल्कुल तवाके शमन जो गानो बुधाईंदा चौथा कलाम बुधाईंदा अदी जी जी। बिल्कुल तवान जो कलाम हलायूं था। सादिया हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम की दी, गुड आफ्टरनून, आई एम सादिया अली फ्रॉम कराची। ओके सादिया, आपको वेलकम कहते हैं। माजिद हुसैन अब्बासी हमारे साथ कहते हैं वेलकम वेलकम टू यू। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद हुसैन अब्बासी फ्रॉम अरावती, पर क्या करें गाँव में नेटवर्क सही नहीं आता। आये हाय, ये भी बहुत बड़ा मसला है। अच्छा सादिया लिखती है कि मैंने पोइट्री लिखती है, मत खोल मेरी किस्मत की किताबों को, हर शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। ओके आदिल हुसैन हमें सुन रहे हैं गाना, ओके आपका गाना लगाने की कोशिश करेंगे। शहजाद कादरी हमें सुन रहे हैं, शहजाद कादरी आपको वेलकम कहा जाता है। आबिद बरोही हमारे साथ है नौशरो फिरोज से, आप हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया। अब्दुल कैसर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। वासु भाई कहते अदी सिदो कैसी हो, ठीक ठाक हो, बिल्कुल मजे में ताम ॿुधायो, कहते असां भी तव्हांजे प्यारे प्रोग्राम में हाजिर थी वियासीं। वासु भाई थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ। और मोहम्मद जमान कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माई स्वीट और सुंदर बुआ जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। अच्छा ऐसे नाल बाणी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम मैडम मुस्कान, ऐसी आप माज दफा मजे में ताम बुदा की, ठीक ठाक मजे। और निदड़ी कहती है अस्सलाम वालेकुम, मौलाना सलाम अदर, वेलकम टू शो टॉपिक टूना। टूना नेम तो भाई क्या बात है, टूना फिश की बात हो रही है यहाँ पर।

0: गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: इट्स 1:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आ रोशन चेहरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: क्या आप आसाबी दर्द जोड़ों की तकलीफ
4: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
3: गर्दन और कमर की तकलीफ
4: पट्ठों के खिंचाव मोच

0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुन जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सुन जो आवाज बुधंदा।

वॉश यूज करते रहेंगे और फेस वॉश करते रहेंगे तो आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट भी रहेगी, आपकी स्किन पर ग्लो भी आता रहेगा और आप खूबसूरती का एहसास भी महसूस करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको परफेक्ट वाला हुसन मिलता रहे। उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 03125025907 और दूसरा नंबर है 03273834309। ये नंबर्स आपकी आसानी के लिए है, जल्दी से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए और मालूमात लीजिए, मिल रहे हैं तो बढ़िया, नहीं मिल रहे तो इन नंबर जो ना वो रब्ता करते रहिए। जैसे बहुत से लोग आकर ये कहते हैं कि बाजी के साझे एरिया में तो अन्य ताई कौन मिले थो? तो पापा ही नंबर से तमाके बुधाया वन था ना, इन नंबर से तमा जल्दी जल्दी राबतो करे पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराई सको था। ओके जी, सो अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरती में इजाफा लाइए, जरा अपने आप को महसूस कराइए कि आप अपनी केयर करते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 8881 और फेसबुक पर, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, हाँ जी, सबसे जो फनी निकनेम आपको दिया गया हो, ऐसा आपको महसूस होता है कि ये जो मेरा नाम है ना ये बड़ा फनी है और ये आपको किसी ने दिया है, वो नाम आप मुझे बताएं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8881 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए।

प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों की खूबसूरती को एहसास हो कि आप वाकई कुछ ऐसा इस्तेमाल करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश बहुत ही

आप इस्तेमाल करेंगे जी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड जी स्किन फेस वॉश, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे ना, खूबसूरती भी वो वाली जो हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगी। बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये हमारे साथ रुखसार कहती हैं कि नहीं नहीं, रुखसार तो स्कूल से आने वाली है, शो सुन रही हो, बहुत ही अच्छा, अल्लाह पाक आपको हंसा मुस्कुराता रखे। मीरपुर खास से गुलाम मोहम्मद मरी मीरपुर खास से। अच्छा भाई ये थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं आप मुझे कभी कभी। चलें थैंक यू। अच्छा किशोर कहते हैं तुझे अखियुनि में अञा निंड आया मूंखे फील थे पियो, तव्हांखे सही फील थे पियो, निंड न बस हलाए छो ईअं थोरो थोरो ईअं स्लो स्लो, तॾहिं मां अॼु सोचां पई त गाना कुझु फास्ट हलायो जे तव्हांखे महसूस न थिए, पर तव्हां ॾाढा माशाल्लाह। इहो वेरी छलक ब्रो। चाचा खालिद कहते आपका निकनेम अच्छा है सर, जो ये टॉपिक है सर, मेरा कोई नहीं निकनेम आई एम खालिद जुनेन, जो कभी बचपन में किसी ने रखा होगा, कोई प्यार से बुलाता होगा या फिर नहीं। अच्छा सादिया कहती है मेरा निकनेम पिंकी था। ओके पिंकी। मोहम्मद सलमान कहते हैं टॉपिक कमांडो कह के फ्रेंड्स बुलाते हैं, जब मुझे तो पर मुझे तो कमांडो की वर्दी से भी डर लगता है। यही होता है, वो तंज में कोटिंदा हुंदा। अच्छा निधि कहती है मेरा एक भाई मुझे ओगी बोलता है और दूसरा भाई डी बोलता है और फ्रेंड्स में कोई निधु कोई निधि बोलता है और मेरा फेवरेट निकनेम है निधि। तुम्हारा हर दिया हुआ नाम अच्छा लगता है मेरे को। अल्लाह मैं सदको बनाए मैं सदको। पोस्ट को लाइक और शेयर किया ही नहीं, कीजिए जरा।

अरे भाई मत करे, आप जानते हैं मुझे सब कुछ पता होता है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये बात है कि मैं चाहती हूँ प्रोग्राम का माहौल जो ना वो जरा ठीक ठाक रहना चाहिए। मैं कोई प्रोग्राम में मिस नहीं चाहती। ओके जी, उनके अलावा ये हमारे साथ नसरुल्ला सूरों के प्रोग्राम जो चंगो मुड़ से भी अच्छी हुए माशाल्लाह नजर न लगे।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना फरीहा परवेज की आवाज में हमने एंजॉय किया। प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से बताइएगा ताकि आप लोगों की खूबसूरती कहां तक पहुंची मुझे अंदाजा हो जाए। ऐसे के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल होने चाहिए तमाम प्रोडक्ट, तो बिल्कुल आप अवेलेबल करा सकते हैं। बस जो नंबर आप लोगों को बताए जा रहे हैं उनके ऊपर राता कीजिए ताकि आप भी ये समझ सके कि हमारे करीबी जनरल स्टोर पर भी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, स्किन फेस वॉश हो या फिर व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हो, तमाम अवेलेबल।

वासा भाई कहती अदी सिडो जवाब कदें कदें मुखे टी वासा एतरा दफा मजाकन में चवंदा आए टी वासा ये क्यों कहते अच्छा किशोर भाई कहते टॉपिक बाबा सही शहजादा कहते हैं मेरे भांजे स्मार्ट चाचू कहते हैं बाकी बचपन से दोस्त और काफी रिश्तेदार केके कहते हैं ओके मिस्टर केके लेकिन सबसे फनी नाम बताना था।

में क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हांसी चाचा खालिद कहते हैं सिद्रा डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं नहीं, अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर जो डिहाइड्रेशन जमा हो जाती है ना वो खत्म हो जाएगा, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए सोली सिंधी में। और मैं तारिक बलोच हमें सुन रहे थे, असा भी शामिल आई हूँ प्रोग्राम में, मोहब्बतूं भाजू वेलकम। अच्छा अदो अदो चाहतो चवे अदी, तो अजकल मुखे हल्के में वेठी पयो लगे तो मुखे भी निदड़ी वांगुर मुंह खराब करो पवंदो, निदड़ी मूसा कदे भी मुंह खराब ना कयो। यस वो सबनी सा कंदी पर मूसा न कंदी। बाकी हल्के में कौन वरतो आहे, तवा सबनी खां भारी आयो। यस आईली फनी कोनी को सची बताए सोचे बैठो। अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हैं असो तो माइट निकनेम रखियो ही को एक प्यारे मानो मिस्टर खड़ूस रखियो हो। अच्छा पर तवा खड़ूस तो ना हो। अच्छा साजिद हुसैन सुमरू भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अदी। ओके आप हमें मिठू देरों से सुन रहे हैं, खुश आमदी दिन वेलकम कहा जाता है आपको। ऐसे ही प्रोग्राम की पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, शामिल प्रोग्राम होते जाइए और टॉपिक को फॉलो करते जाइए और बताइए आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं। उसके अलावा टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे, वापसी जल्दी आप लोगों के पास। तो सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे अब आप सुनेंगे।
5: ईरान ए ओमान आबना हरमुज में बहरी जहाजन के एक रस्ते ते इतफाक करे वरतो। ईरानी परदेही वजारत तस्दीक करे छी। तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो है त ईरान ए अमेरिका मुआहदे जो गडियल पदरनामो तैयार करे रहा है। चीन धुर जी मुदाखलत ते मामलो खराब भी थी सके तो।

ईरान खिलाफ जंग लाइ हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते अमेरिकी सदर ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर पैट हेग्सेथ ते नाराज़। अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट मूजिब सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान पैट हेग्सेथ ते हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप ख़बरुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। कूड़ियूं ख़बरूं पखिड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुर झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़िशान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे।

ईरान में एक दुर्गालिन ऐं ॿी जंग जारी रखण जी हामी आहे। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जी दावा जे डी वेंस चयो आहे त ॻाल्हियुनि ऐं छिकताण वारे अमल में सूरतहाल हेठि मथे थींदी रहंदी आहे। जेको बि थींदो अमेरिकी अवाम जे हक़ में ई थींदो। पाकिस्तान खिते में अमुन जे क़याम लाइ दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी कम जारी रखंदो। आबन हरमुज़ ते अॻभराई सां ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि जो रस्तो हमवार थींदो। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी चयो आहे त बाबुल मंदब में बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी मज़म्मत कयूं था। पाकिस्तान बहरी रस्तनि जे तहफ़ुज़ ऐं सलामती जी हिमायत जारी रखंदो। इज़ाम अमुन फ़ौज बाबति का तजवीज़ आई त पाकिस्तान जाइज़ो वठंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जे महफ़ूज़ थाकनि ऐं सहूलतकारीअ जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे।

कराची जी अदालत वापारी मीर रज़ा अली जी कबर कुशाई बाबत दरख्वास्त ते फैसलो महफूज करे वरतो। मीर रज़ा जे पी जी दरख्वास्त अदालत में बुधनी थी। धुरिन जा दलील बुधण बाद अदालत कबर कुशाई बाबत दरख्वास्त ते फैसलो महफूज कयो। फैसलो अॼु ई ॿुधायो वेंदो। मक़बूल वापारी जे पीउ मीर हसन चयो त पुट ते कर्ज़ हो, सॼो मुल्क कर्ज़ी आहे, परेशान आहियूं, पुलिस कतल खे मञण लाइ बि तयार नाहे, बयान बि नथी वठे, इंसाफ़ चाहियूं था।

0: चकवे जो पुराणी तकरार तां बिंदुरिन में झेड़ो एक जणो कतल कोट शाहू थाने जी हद में शींह उमर सेकाणी जतोई जे धुरिन में झेड़ो थियो धुरिन जे कबे मथां फायरिंग मोहम्मद मूसा पुट साक जतोई मारजी वयो मारजी वयल जो लाश खानपुर अस्पताल मुंतकिल धुरिन में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार ही गोडन जो सूर है चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे हलन वेहम
4: दुखा तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी
3: न यार छा वाकई फायदो करे थी।
4: बिल्कुल अदा कुदरती जुजन सा तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़ब थी सूर सोडियम जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मा आराम पहुंचाने में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे गोडन जो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल किए कजे
4: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वठ आई बुध जे करे उमरे या हज ते वनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पी वंजा।
3: वाह पोए अजी वठींदस
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांचे वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।
5: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर दा रहो।

0: is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream Asli Glow Har Niya Josho a product by Biocon International Pakistan
2: Apna Shehar Apna Ghar Matyari aur Matyari ki awaaz
3: GFM 91.6
4: बताएंगे और साथ ही साथ मैंने पहले आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया सो अभी आप लोगों को बताया जाएगा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी प्रोडक्ट देंगे लेकिन साथ कहा जाता है आप लोगों से इसका टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं कि आपका निकनेम जो दिया और आपको ये लगता है कि ये भाई बहुत फनी मेरा एक निकनेम है जो शायद आप उससे लोगों को बताने में भी थोड़ा घबराते हैं कि भाई काश यो अगर नालो मानन की खबर पैजी वही तो मानो मुते जरूर टोकना सो तमाम बट भी कोई अड़ो तमाम जो फनी निकनेम आए सको तमाम मुझे बुधाइंदा उनके अलावा तमाम 8881@ फेसबुक से मुझे ज्वाइन करना वो पाया ठीक है सो 8881@ फेसबुक से तमाम असा के ज्वाइन कर फेसबुक वाला मानो पोस्ट के ज्यादा खान ज्यादा लाइक एंड शेयर करना ओके जी उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा मतलब ऐसा है कि मेरा दिमाग तो देखें कि मैंने कितने टाइम से ये एक मिस्टेक करती आ रही हूँ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इतनी सारी जबकि प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने सिर्फ एक लिंक दिया हुआ था कि भाई व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सिर्फ एक लिंक सही लगता है जैसे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो प्रोडक्ट्स थी तो इसके अंदर जो है ना आप लोगों को दो लिंक मिल रहे थे यानी कि 2 बजे के बाद आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता था तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों ना हो जाए कि पहले घंटे में यानी कि पहला एक ही लिंक समझ ले रहे ना वो तो उसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाएगा बाकी जो दूसरा घंटा होगा तो उसमें आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा क्योंकि व्हाइट एज के बहुत ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स हैं तो उसको टाइम भी बहुत ज्यादा चाहिए समझ रहे हैं

ये चीजों को अच्छे से समझने के लिए टाइम हमारे पास जबकि बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कितने सारे अच्छे से कितने शानदार क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम मिल रही है, व्हाइटिश लवली क्रीम मिल रही है, पिम्पल ट्यूब में व्हाइटिश है, व्हाइटिश है, और व्हाइटिश के हेयर रिमूवल लोशन भी आते हैं जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है। उसके अलावा हर तरह का आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि व्हाइटिश वालों ने बहुत ही सोच समझ कर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने के साथ साथ ये जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं ये जनाब नेचुरल अजा से तैयार किए गए हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। जनाब जब आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, ये तीनों चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। और फायदा भी ऐसा भी था, फायदा आप लोगों को ऐसा मिलेगा कि आप लोग ये कहेंगे कि भाई हम क्यों नहीं पहले इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक है और हर तरह की स्किन के ऊपर सूट करने वाला प्रोडक्ट है, जैसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलें भाई हमने व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम तो इस्तेमाल कर फेस वॉश या फिर सोप नहीं है, तो अपनी सोप मौजूद है एंड व्हाइटिश का फेस वॉश भी मौजूद है।

याने कि तमा वठानी कोई भी जिकवा ना ये अच्छा चवाई नखे हाँ खानो कोने फेस वॉश न जायो हाँ तमा वट बई चीज हुआ अगर तुम साबुन इस्तेमाल करना तो तुम वाइटेज जो ब्यूटी सोप मौजूद है अगर तुम फेस वॉश इस्तेमाल करना भी मौजूद है कहें जी तुम बिल्कुल इस्तेमाल करी सको के वाइटेज का जो फेस वॉश है ना इसे बहुत बेहतरीन तरीके से और सोच समझ के तैयार किया गया है वो ऐसे क्योंकि वाइटेज का जो फेस वॉश है ये विटामिन सी से तैयार किया गया है और विटामिन के ऊपर आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है बिल्कुल जनाब सो वाइटेज का फेस वॉश है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा और क्रीमी सा फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा

हैप्पी है वाइटिश ब्यूटी क्रीम की। जैसे वाइटिश ब्यूटी क्रीम को बिल्कुल वैसे ही वाइटिश तैयार, तो जरूर से ये तमाम करके देखिएगा, चाहे वो वाइटिश ब्यूटी क्रीम हो या फिर वाइटिश फेस वॉश हो या फिर वाइटिश ब्यूटी सोप हो।

लेकिन आप ये तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा। नंबर जरा नोट कीजिए, ही साईं गानो भी ॾाढो हलियो पंहिंजे दौर में। कोई शादी खाली न हूंदी हिन गाने खां बिना। ओके ॾिसो, नंबर आहे 033-27-38-43-09 ऐं ॿियो वरी नंबर आहे 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907 केॾो ॾिसो प्यार सां ॿुधायां थी। तव्हांखे छा करिणो आहे, तव्हांखे डायल करिणो आहे।

बिल्कुल जी, चाचा पूछ रहे हैं कि एवोकाडो कौन सी क्रीम में या फेस वॉश में मौजूद है। एवोकाडो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर मौजूद है। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो नाइट क्रीम है, जैसे तुम्हारा आज टाइम लगाए सको था। बाकी फेस वॉश में वाइटामिन सी आए। हाँ, साबुन में भी एवोकाडो अथवा व्हाइटिश साबुन में।

की असांखे न माण्हू माराइणा आहिनि पर असांखे माण्हू सोणा ज़रूर करणा आहिनि। सो बिल्कुल तव्हां वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करे सघो था। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है सलाम भाऊ जी, हाउ आर यू? आज हम भी ज्वाइन कर चुके हैं आपका शो, क्या अच्छा किया ना, एंजॉय करते हैं जी वाइटेज ब्यूटी शो। बिल्कुल जी भाऊ, आपने बहुत अच्छा किया, आप हमारे साथ ही, हमारे प्यारे भाऊ जयपाल भाऊ, और कहते हैं पोइट्री अर्ज है। भाऊ हैरान ना हुआ कर यूं मेरे याद करने पर, हैरान ना हुआ कर यूं मेरे याद करने पर, ताल्लुक जिनसे दिल का हो वो हर पल याद आते हैं। जयपाल भाई क्या बात है, क्या बात है, सफा तुम कमाल करी छ। अच्छा, ये हमारे साथ ही ठरी मीरवा से महबूब अली शेर, रिजवान अली और इमरान अली शेर, भाऊ जो मोहब्बत हुआ इन प्रोग्राम में तुम्हारे चौदह भली करी आया। और हैं जी हमारे साथ, वालेकुम असलाम फुलजी स्टेशन लग नूरपुर खां, फौजी पठान खान खोसो।

इस्तेमाल करी सको था वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तवा के खबर है हर तरह जो प्रोडक्ट तवा जले मौजूद है सो वाइट एश ब्यूटी क्रीम है वाइट एश ब्यूटी सोप है वाइट एश फेस वॉश है तवा इस्तेमाल करी तवा जे खूबसूरती के मिले एक नो एहसास एक नई खूबसूरती एंड तवा भी चो वाह सही वाह हाने असा जे हिस्सा वाला प्रोडक्ट भी मार्केट में अच्छी गया है ओके जी मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर अस्सलाम वालेकुम बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है ओके वेरी नाइस ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम प्यारी मैडम आरजे सिद्रा मुस्कान फुलजी स्टेशन लग थोड़ो यो समझ में ना आयो तवा जो सजो यो जेको तवा जो गोठा सिटी आ आप हमारे साथ है जी डॉक्टर हसीना साहिबा आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है अच्छा हैप्पी कहती है अस्सलाम वालेकुम सिडो जानी मेरी प्यारी मैं भी आ गई आपकी प्यारी सी महफिल में आपको वेलकम कहते हैं वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत हैप्पी आपका निकनेम है लेकिन आपका नाम बहुत खूबसूरत और सजाद अली जुमाली कहते नवाबशाह से सॉन्ग प्ले करें ओके मां कोशिश क्या थी वैसे हाने तकरीबन सबनी जा गाना लिस्ट में अच्छी चुका है जो हाने जेको गाने जी फरमाइश कदो ना थोड़ो तमा स्टॉप लगाए जो

ਕੋ ਸਦਕੋ ਸੁਣਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸਦਕੋ ਸਦਕੋ ਤੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਬਿਕਾਰਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਸਿਕਾਰੋ ਜੋ ਆਈਲੀ ਸਦਕੋ ਸਦਕੋ ਸਦਕੋ ਹੈ ਸਦਕੋ ਸਦਕੋ ਸਦਕੋ वाह साईवा सदको सदको अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है। अली अकबर बरोही भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। मोहम्मद मीरन जकरानी भाई जेकब आबासी में सुन रहे हैं वेलकम इन खुशामदीद। अच्छा ये हमारे साथ हैं मिसेस गुलाम मोहम्मद मरी मीरपुर खास से, यानी कि आप रुखसार मरी की वालिदा हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको वेलकम कहा जाता है आप हमारे साथ। अली अकबर बरोही भाई आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए थैंक यू। अच्छा ये हमारे साथ ही साद साद साद वालेकुम अस्सलाम कहते कैसी है, मैं ठीक हूँ कहते अदी ताजो प्रोग्राम तो वी आई पी है अदा ताजो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम तो आगे पसंद अच्छी पे सदको।

सही था जो हिकड़ो अगे ही नखरी ली आए वरी मथा तू अन्या लाड कर कदे कदे मिड़े ये निदड़ी दे भी प्यार इंदो आ अच्छा दर्दी तिल के लिए चंदा टॉपिक अम्मी निदुड़ी बोलती है और अलीजा पतलू बोलती है क्योंकि मैं बहुत पतली हूँ और सबसे प्यारा निकने मुझे स्वीटी लगता है जो तुम समझ गई हो ये मैं समझ गई बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी स्वीटी

0: pasto de claro lloro. Digo, Karen.
1: Saduco, saduco, saduco, saduco, saduco. Tuncha nana janpa.
0: ओके ब्रेक आया ना गाने का पॉइंट गाने थे बैठा हो जो हाँ ओ ही मनी ओ ही मोटा में थे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: शरपसंद देखिए 8 अक्टूबर से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

ओ गिरी क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो बताया करें ताकि हमें भी एहसास हो कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं वो वाकई प्यारे होना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ खूबसूरती हासिल करना जो होता है ना वो बहुत एक आजकल के दौर में एक नॉर्मल सा काम हो चुका है। वैसे भी देखा जाए तो मार्केट में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स में से सही प्रोडक्ट जो है ना वो चूज करना एक बहुत मुश्किल सा काम लगता है मुझे। तो अगर आप भी इस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई

कॾहिं बि बंदि न कंदा कयो. वैसे चवंदा न दुआऊं घुरी न आहिनि वठबियूं, जिन जे माण्हुनि जे लाइ दिलि मां दुआऊं पाण निकिरंदियूं आहिनि उहे माण्हू ॾाढा अनमोल हूंदा आहिनि. सो बिल्कुलु तुंहिंजो साथ हुजे सुहिणा.

गई थी। सो कहते ना कि गाने चलाती लेकिन सुनने नहीं देती। तो बिल्कुल जी गाने सुनिए और इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम और व्हाइटिश लवली क्रीम और डॉक्टर पिंपल ट्यूब के बारे में भी बताते हैं, और उसके अलावा आप लोगों के फीडबैक्स भी हैं, तो वो भी जरा आप लोगों को, ऐसा ना हो कि भाई हमारे फीडबैक्स तो आप पढ़ती नहीं है, तो आप लोगों की फीडबैक्स की जानिब भी आया जाएगा। ओके जी, सो यहाँ पर व्हाइटिश लवली क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाइटिश लवली क्रीम जो है ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन्स का फार्मूला है, जिसके अंदर जनाब 30 वाइटामिन्स के कैप्सूल्स एड किए गए हैं। और ऐसा नहीं कि भाई आप ये सोचे कि भाई सिर्फ हमारी स्किन की हिफाजत ही होगी, या फिर ऐसा वाला सीन बन जाएगा कि हमें सिर्फ गोरापन मिल जाएगा, या फिर व्हाइटिश लवली क्रीम की सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि व्हाइटिश लवली क्रीम को सिर्फ इस तरह नहीं तैयार किया गया कि भी आप लोगों को गोरा निखार मिले, आप लोगों के चेहरे पर निखार आए, बल्कि ऐसा भी सीन है कि आप लोगों के चेहरे पर जो ये सूरज के खतरनाक असरात आते हैं ना, तो उनसे भी आप लोगों को बचाया जाए। तो आप लोगों के लिए व्हाइटिश लवली क्रीम है, जिसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, और व्हाइटिश लवली क्रीम के साथ साथ जो है ऐसा वाला सीन बनाइए कि इसे आप अपने डेली बेसिस के लाइफ के अंदर ना यूज कर लीजिए, चाहे आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई जॉब करते हैं, या फिर आपने किसी शादी फंक्शन में जाना है, तो गर्मियों का मौसम जब भी होता है तो आप लोगों के पास जो है ना मेकअप करने का थोड़ा एक ऑप्शन ही होता है कि भाई हमने मेकअप नहीं लगाना। वैसे भी गर्मियों के सीजन में जब मेकअप लगाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनको मेकअप या तो लगाना नहीं आता, या तो फिर पता नहीं होता कि भाई गर्मियों में मेकअप किस तरह लगाया जाता है, और उस सूरत हाल में ऐसा सीन बन जाता है कि आप अपनी पूरी शादी जो है वो खराब ही कराती हैं। आपकी स्किन इतनी खराब हो जाती है, पैची हो जाती है, आपका मेकअप नजर आता है इतना ज्यादा बुरे तरीके से। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आप व्हाइटिश लवली क्रीम का यूज कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है,

बहुत ही लगाने के साथ ही आप लोगों के चेहरे पर जज्ब हो जाती है और आप लोगों के चेहरे पर एक नया सा निखार आना स्टार्ट हो जाता है, आपके चेहरे पर शिमरी इफेक्ट आ जाता है और आप लोग महसूस करते हैं कि भाई वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर चुके हैं। और व्हाइट एज लवली क्रीम जिसे आप घर में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे बूढ़े जवान मर्द हजरात खवातीन हर कोई लगाएंगे। और उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। बिल्कुल जी, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आपके चेहरे के एक्नीज के खात्मे के मुताबिक तैयार किया गया है। अगर आप एक्नी को खत्म करना चाहते हैं तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कीजिएगा। और उसी के अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर एक्नी नहीं लेकिन एक्नी के निशानात काफी ज्यादा है तो उसके लिए भी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब यूज किया जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ आपके चेहरे के एक्नीज को खत्म करेगा बल्कि आपके चेहरे पर जो ये निशानात होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर आपके चेहरे पर कोई चोट का निशान हो, कोई जलने का निशान हो, इतने सारे निशानात अगर आपके चेहरे पर मौजूद है तो टेंशन की कोई बात नहीं। आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आपको मिल जाएगी बेदाग, क्लियर और खूबसूरती वाली स्किन। तो इस्तेमाल कीजिए। वैसे व्हाइट एज लवली क्रीम को लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप दिन में जितनी मर्तबा लगाएं आप लगा सकते हैं। फेयरनेस क्रीम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है तो आप सुबह लगाएं, दोपहर, रात को जब आपका दिल करिए आप लगाइए। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है इसे आप लगाएंगे दो मर्तबा, यानी कि सुबह को भी लगाएंगे और आप रात को भी लगाएंगे। लेकिन लगाने से पहले ये बात याद रखा करें कि आप अपना फेस वॉश लाजमी किया करें। फेस वॉश करना बहुत जरूरी होता है, तो फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाएं तो वो लगाइए। अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो वो लगाएं। और इसके अलावा जो है ना डॉक्टर पिंपल ट्यूब अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप जहां जहां पर एक्नी हो, जहां निशान हो, जहां कट हो, वहां वहां पर लगाइएगा, पूरे फेस पर नहीं लगाना, ठीक है।

चीजें, ये बहुत ही प्यारा गाना किसी ने फरमाइश कर दिया था तो हमने सेट कर दिया था लिस्ट के अंदर। और स्मार्टू गोपांग कहते हैं कि तुम्हें खोने का दुख तो बहुत है मुझे, मगर उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। मैं आज भी तुम्हारी यादों में जिंदा और शायद मुझे याद भी नहीं करती तुम। ओके, बहुत बेहतरीन। और यहाँ पर चाचा खालिद हमें सुन रहे कहते हैं आई एम वेरी सैड बट वाई। और उनका अलावा आदिल कहते हैं टॉपिक आंसर मेरा निकनेम है। अच्छा, नाइस नाइस। अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हैं हाँ जाई मुझे निकनेम यो भी अथई केड़ो केड़ो जल्दी बताए वारो के। अच्छा ये हैप्पी कहती आरजे घर में मुझे पूरी। अच्छा परी कहते हैं, परी सही सही, मेरे को लगा पूरी क्यों बोलेंगे। और कहते हैं आप मुझे हैप्पी गर्ल भी कहते हैं, मैं बहुत चले जबरदस्त, आपको दोनों नाम ही बहुत अच्छे लगते हैं, चले एंजॉय करें। और उसके अलावा सादिया हमारे साथ मौजूद है, सादिया आपको वेलकम कहते हैं। आशिक खास के लिए मैं सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, और कहते प्रोग्राम सुन रहे हैं माशाल्लाह वेरी नाइस योर प्रोग्राम, थैंक यू जी, आपको वेलकम कहा जाता है। और गाने हमारे पास है जी, यहाँ पर दो टाइम देखा जाए तो चार नहीं बल्कि छह मिनट बजे, तो चले हम तीन तीन मिनट जो है ना ये दोनों गाने सुन लेंगे। ये वाला गाना हमारे पास मौजूद है तो जरा हम इसे भी सुनेंगे, और थोड़ा आगे करना पड़ेगा।

अच्छा लुबना हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। सरोजानी में भी अच्छी वयस तमाम जी बेहतरीन शो में, थैंक यू सो मच लुबी, आपको वेलकम कहा जाता है। अच्छा ये हमारे साथ जो पैनल पर हैप्पी गर्ल होती है वो कहती है मेरा फनी निकनेम है किट्टू, मुझे किट्टू बुलाते हैं, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और फौजी पठान खान खोसो भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इतने सारे अपने मैसेजेस कर दिए हैं। और हमारे साथ जयपाल भाई कहते हैं भाऊ जवाब लास्ट में। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, खुशी इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगी फिर, हाँ हम बाकी मरीज बनेंगे। हम खुशी से इलाज करवाएंगे, ठीक है, खुशी को पारित कीजिएगा हमारे। और मकसूद मल्हा भाई आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे पास खास अब्दुल्ला महर भाई, आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू। अच्छा ये बदीन खान डॉक्टर शौकत अली है सिद्रा तान प्रोग्राम सिटुआई, सो थैंक यू।

ओके जयपाल भाई कहते हैं कि खुदा कबूल ना करे वो दुआ जिसमें मांगा हो किसी और ने किसे। अच्छा कहते हैं वेदर अपडेट कीजिए हमारे लाड़काना सिटी की। वेदर भाई ऐसा है कि गर्मी है, समझ नहीं आ रहा कि बारिशें पूरे मुल्क में हो गई, बस लाड़काना में ही बारिश नहीं, बहुत गर्मी है। उनके अलावा कहते हैं आप भाव हमारी भी दुआ है, आप हमेशा खुश आबाद और हर वक्त हैप्पी रहें। डियर भाव जी थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे भाई जान। एरम कहती हूँ वालेकुम अस्सलाम मुझे प्यारे दिलबर दोस्त जवाब है। अच्छा तो क्या अब भी आप मोटी हैं? लुबना लाइफ में ॾाढो ॾुख अचे थी, मेरा त कोई निकनेम ई नही ऐं आहे जो तव्हांजो निकनेम लुबड़ी। ये तो मत भूले। ओके जी बहुत ही खूबसूरत सा कलाम हमने यहाँ पर सुना और उसी के साथ साथ ये वाला लास्ट में रहता था। बिल्कुल जी प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा नजीर खोसो भाई भी सुन रहे बलोचिस्तान से, थैंक यू। फरजाना जमील हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम फरजाना। अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हाँ जी को फरमाइश कहो उन गानों सुभा जुमे हलो वो बिल्कुल। सुभाणे जुमो आयो।

चले फिर मिलते हैं आप लोगों से 5 बजे वाले प्रोग्राम में, ठीक है? तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और 5 बजे हमें ज्वाइन कीजिएगा। और इसी के साथ साथ कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाहिश, जिनके फीडबैक दे चुके, जिनके गाने दे चुके, सभी से माजरत करते हैं। सो मोकलानी ना है बाबू सिंह, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap,
4: jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap,
4: har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM network par
6: pal se wahid Iran aya America muahide jo gadel padar namo taiyar kar raha hu. Train durji mudakhalat te mamlo kharab bhi thi sake to. ईरान खिलाफ जंग लाए हथियारन के जखीरे में घटताई थे अमेरिकी सदर ट्रंप दिफा वारे वजीर ते नकीटन पोस्ट मौजूब सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान पेट हेक से हथियारन के जखीरे में घटताई ते कावड़ जो इजहार कर सदर ट्रंप खबरों की तरदीद कन्दे है अमेरिका वट हथियारन जो वो जखीरो मौजूद है कूड़ी खबरू पखेड़ीदड़न के जेल वंजो पे तो दुश्मन 48 कलाकन दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करने की साजिश कई पर नाकाम रहो जंग
7: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार
6: जे हौसले अजम दुश्मन के नाकाम बनायो नए सुप्रीम लीडर भी ईरान के मुतहद हैं मजबूत बनायो है।

0: ईरान में हिकु धुर ॻाल्हि हिन बि जंग जारी रखण जी हामी आहे। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस जी दावा जे डी वेंस चयो आहे त ॻाल्हि हिन सिखाण वारे अमल में सूरतयाल हेठि मथे थींदी रहंदी आहे। जेको बि थींदो अमरीकी अफ़वाम जे हक़ में ई थींदो। पाकिस्तान खिते में अमुन जे क़याम लाइ दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी कम जारी रखंदो। आबना हरमुज़ ते अॻभराई सां ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि जो रस्तो हमवार थींदो। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्रा बि चयो आहे त बाबुल मंदब में बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी मज़म्मत कयूं था। पाकिस्तान बहरी रस्तनि जे तहफ़ुज़ ऐं सलामती जी हिमायत जारी रखंदो। निज़ाम अमुन फ़ौज बाबति का तजवीज़ आई त पाकिस्तान जाइज़ो वठंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जे महफ़ूज़ थाकनि ऐं सहूलतकारीअ जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। ओमान वेझो आबना हरमुज़ में ॿिनि ऑयल टैंकर्स में धमाका। बरतानवी मेरी टाइम एजेंसी मौजूदु बहरी ॿेड़नि में धमाका ओमान वेझो थिया आहिनि। वधीक तफ़सील न आहिनि मिलिया। यमन में होसिन पारां सऊदी बहरी ॿेड़नि ते हमलनि बाद बाबुल मंदब में बहरी ट्रैफिक घटिजी वई। कुझ ई जहाज़नि बाबुल मंदब मां सफ़र कयो। पीपल्स पार्टीअ जो आज़ाद कश्मीर में मीरपुर बाद मुज़फ़राबाद डिवीज़न में ॿिनू लीग ते धांधली करे सीटूं खसण जो इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन जी कारकर्दगी ते बि सवाल उथारे छॾिया। नियर बुखारी चयो आहे त मीरपुर डिवीज़न मां चार सीटूं पीपल्स पार्टीअ खां धांधली करे खसियूं वयूं। राणा सनावला जो बयान धांधलीअ जो सबब बणियो। पाकिस्तान में कॾहिं बि चूंडूं मरहलेवार न आहिनि थियूं। रन आउट में ॿुधाए रहियो आहे त चूंडनि में धांधली थी आहे। ही पोंछ डिवीज़न में बि चूंड मरहलेवार कराइण चाहिनि था। आईजी सिंध जावेद आलम मोडो जी कराची जे सिटी कोर्ट सामंत कराची बार जे सदर आमिर वड़ाइच ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात कई। आईजी सिंध चयो त बार बेंच ऐं वकीलनि खे गॾिजी कम करणो आहे। ग़लति थियणु घुर्जे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ते गॾिजी कम करणो आहे। आमिर वड़ाइच चयो आहे त आईजी जावेद खे थाणे में इज़त मिलण
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ आया साबी दर्द इतरो वधी वियो आ है जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आ है छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़्ब थी सूर आई।

0: सत्यमा आराम पहुँचाण में मदद दे थी।
1: सिर्फ चेले सूर लाए
0: ना दा असाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेले जी तकलीफ है सट धक लगन पुराण जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है।
1: इस्तेमाल किए कजे
0: मुतासिर थे हंध ते डी में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ फकीरी डेक्स पॉइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स पॉइंटमेंट।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: शर पसंद देखिए हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: It's 3:15.
2: This time chilli cream
3: और मटपास
4: GFM 91.6.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 3:30 PM. This time check is brought to you by
3: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
5: ये मुअसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासरा सुकून का एहसास पाएं
4: और फिर जाने वाले जैसे क्रीम को अपने हमरा
5: दर्द भी करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल दिल ढूंढता है फिर वही, पहली अक्टूबर से बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
1: जी ए एफ

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जीवा तराना को पहचान जीवा।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी हीट सोप
1: छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी

देखिए नया ड्रामा सीरियल पामाल बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अमरीका जी पहिरीं तर्जी ईरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण आहे। तेहरान सां तकरार जे ख़ात्मे लाइ वॉशिंगटन फौजी वाशी ऐं सिफारतकारी समेत सभु रस्ता अख़्तियार कंदो। अमरीकी नायब सदर जे टी वेंस आहे त ईरान में हिकु धुर जंग जो ख़ात्मो ऐं ॿी जंग जारी रखणु चाहे थी। तकरार जो को न को हल निकिरी ईंदो। पाकिस्तान खिते में अमन जे क़ाइम लाइ दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी कम जारी रखंदो। आपदार मुस्ते अगपराई सां ईरान अमेरिका गालियुनि जो रस्तो हमवार थींदो। पर ॾेई तर्जुमान टायरुस अंद्राबी चयो आहे त बाबुल मुंदिब में पहिरीं जहाज़नि ते हमलनि जी मुज़म्मत कयूं था। पाकिस्तान आमती जी हिमायत जारी रखण में अमन फौज बाबति का तजवीज़ आई त पाकिस्तान जाइज़ो वठंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जी महफ़ूज थाकनि ऐं सहूलतकारी जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। ओमान वेझो अपना हुर्मुस में बिन आयल टैंकर्स में धमाका। बरतानवी मेरी टाइम एजेंसी मूजिब पहिरीं बेड़नि में धमाका ओमान वेझो थिया आहिनि त वधीक तफ़सील नाहिनि मिलिया। यमन में हुसिन पारां सऊदी बहिरी बेड़नि ते हमलनि बाद बाबुल मुंदिब में बि बहिरी ट्रैफिक घटिजी वई। कुझ ई जहाज़नि बाबुल मुंदिब मां सफ़र कयो। पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में मीरपुर बाद मुज़फ़राबाद डिवीजन में बि नून लीग ते धांधली करे सीटूं खसण जो इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन जी कारकर्दगीअ ते बि सवाल उथारे छॾिया। नैयर बुख़ारी चयो आहे त मीरपुर डिवीजन मां चार सीटूं पीपल्स पार्टी खां धांधली करे खसाइण सबबु बणियो। पाकिस्तान में कॾहिं बि चूंडूं मरहले वार नाहिनि थियूं। टर्न आउट बि ॿुधाए रहियो आहे त चूंडनि में धांधली थी आहे। हीउ पूंछ डिवीजन में

0: मरहले फार कराइण चाहिन था। आज सिंध जावेद आला मोटो जी कराची जी सिटी कोर्ट आमद। कराची बार जे सदर आमिर वड़ाइच बेन से मुलाकात कई। आई जी सिंध चयो त बार बेंच ऐं वकीलनि खे गॾिजी कम करणो आहे, ग़लति फहमियुनि खे कंट्रोल करण जी कोशिश थियणु घुर्जे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ते गॾिजी कम करणो आहे। आमिर राय चयो आहे त आई जी जावेद आलम ओटो जे अचण ते शिकायतूं ख़तम कयूं आहिनि, हाणे न एफ आई आर घुर्जे न वधीक एक्शन। कम थाणे में वापारी कबर कुशाई पर कुशाई लाई है। कई वेंदी। आई जी सिंध जावेद आला मोटो चयो आहे पुलिस हिन केस ते बाबति जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वेंदी। कंबट में टे ॾींहं अॻु गुम थियल ज़राअत खाते जे रिटायर्ड आफ़िसर जो घर जे कमरे मां लाश हथ। पुलिस पहुची खुटाए करे ज़ाहिद भट्टी जो घर जे कमरे मां लाश हथ कयो। लाश पोस्टमार्टम लाइ इस्पताल मुंतकिल जी बुनियाद ते मक़तूल जी ज़ाल समेत ॿ औरतूं गिरफ़्तार। पुलिस जो चवण आहे त इतलाउ मिलियो त कमरे मां बदबू अची रही आहे। खुटाई कई त लाश मिलियो। मक़तूल जी ज़ाल लतीफ़ा शेख समेत ॿिनि औरतुनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। वधीक जांच जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: यारे ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
4: तो पोई छा अन्या तई फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
3: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़ब थी सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोरन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्ज़िश खां पोइ छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: रुगो मुतासिर हंद ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध। जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा।
3: वाह, पोइ अॼु ई वठी ईंदसि।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफ़एम 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल ना तुम जानो ना हम, पीर से जुम्मा
1: या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: टेक्स्ट जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 5:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब रेमिट बैंक। अल हबीब, रिश्तों भरोसे जो।
4: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
6: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
7: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंह की असेंबली एक बार मुझे नंबर तो याद नहीं है, यूनैनिमसली यानी 100% किसी भी नए सूबे को सुबह असेंबली में बनाने की मुताबिक, तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मजा नहीं, लोगों को भरोसा है आप इसको इतना ड्रामेटाइज कर देखिए लाशें गिर गए करिए इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज
1: केपी लाश ऐं वॾी सिंध में कोसूं सिंध असेंबली केतिरा ई भेरा नवनि सूबनि ख़िलाफ़ यकराए ठहराउ पास करे चुकी आहे। अवाम खे बि भरोसो आहे हरू भरू मामले खे वधाए पेश न कयो। सिंध जे वॾे वज़ीर बहादुर शाह जो मोहसिन नक़वी जे बयान कराची में मीडिया सां वज़ीर चयो त पुरमन एहतजाज जो सभिनी खे हक़ आहे पर रोड बंदि करे अवाम खे परेशान नथो करे सघिजे। सिस्टम खे नाकाम चवंदड़ हिकु भेरो थर घुमी ॾिसनि, थर जो मॉडल सवाल थियणु घुरिजे। मादनी वसीलनि सां मालामाल आहियूं, घणियूं सलाहियतूं इहा इस्तेमाल न थियूं आहिनि।

दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु चुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नएं सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे। अमेरिका जी पहिरीं तरजीह ईरान खे एटमी हथियारनि खां रोकणु आहे। तेहरान सां तकरार जे ख़ात्मे लाइ वाशिंगटन फ़ौजी मुआशी ऐं सिफारतकारी समेत सभु रस्ता अख़्तियार कंदो। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त ईरान में हिकु दौर जंग जो ख़ात्मो ऐं ॿी जंग जारी रखणु चाहे थी। तकरार जो को न को हल निकिरी ईंदो। पाकिस्तान खिते में अमन जे क़याम लाइ दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी कम जारी रखंदो। अपना हर मुस्तक़बराई सां ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो रस्तो हमवार थींदो। परडे तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी चयो आहे त बाबुल मंडब में बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी मज़म्मत कयूं था। पाकिस्तान बहरी रस्तनि जे तहफ़ ऐं सलामती जी हिमायत जारी रखंदो। फज़ा में अमन फ़ौज बाबति का तजवीज़ आई त पाकिस्तान जाइज़ो वठंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जी महफ़ूज़ ताक़त ऐं सहूलतकारी जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 80 सिंध की आवाज।
2: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
5: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
4: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
5: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंदते आसानी सा जजब थी, सूर आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी।
4: सिर्फ चेल ही सूर लाए
5: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
4: इस्तेमाल किए कजे?
5: मुतासिर थे हंध ते डीह में 2-3 भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
6: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
3: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: It's 7 PM. This time check is brought to you by
2: Fakiri Dex Ointment.
3: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM network par Kids. Aap sun rahe the GAFM network par KTN News.
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश। फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुता

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: आवाज भी सिंह की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।

0: GFM 91.6.
1: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
4: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब सोमालिया के बचाव वाले वजीर की क्यादत में आला सतही वफद की मुलाकात. GHQ रावलपिंडी में मुलाकात दौरान गड़ियल दिलचस्पी के मामलन इलाकई सिक्योरिटी सूरत हाल बितरफी दिफाई ए सिक्योरिटी सहकार के हथी डेण के मामलन ते ख्यालन की देवट ISPR मूजिब धुरियन गड़ियल सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुंह डेण लाय अस्करी राबता वधिक मजबूत बनने की अहमियत ते जोर भरियो. सोमालिया के बचाव वाले वजीर अमन इस्तेकाम के हथी डेण लाय पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत ए हथियारबंद फौज के पेशेवराने किरदार के सराहो. फील्ड मार्शल खत्ते में जटादार अमन के क्याम लाय हर मुमकिन सहकार जो अजम मरजाय. वजीर आजम शहबाज शरीफ तीन दिन के दौरे से सऊदी अरब पहुंची वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ए बेन सा मुलाकातू कंदो बितरफन लागापन समेत खत्ते में जारी चिकटाण ते गालियों थींदियूं. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ख्वाजा आसिफ फताउल्ला तारण ए तारिक फातमी भी वजीर आजम सा गड पहुंता. नायब वजीर आजम इसाक डार अगे सऊदी पहुंतल.
5: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले
3: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN News.
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GFM 91.6.
7: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है.
8: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
7: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
8: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
7: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए.
8: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास.
7: नीम प्रिकली हीट सोप
8: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है. फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
7: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
9: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: It's 8:30 PM. This time check is brought to you by।
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम अब आपकी खूबसूरती का फैन। वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं अब बता कौन से धागे को जुदा

0: कफीर। देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा कहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

ट्रंप काबीना इजलास दौरान पेट हेक सेठ ते हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप ख़बरुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमरीका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। पूरियूं ख़बरूं पखीड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत नाकाम रहियो, जंहिंखे शाम वांगुरु झुकायो। ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम ईरान खे मुतहिद आहे। तेहरान सां तकरार जे ख़ात्मे लाइ वॉशिंगटन फौजी मुआशी ऐं सिफ़ारत पर रस्ता अख़्तियार कंदो। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त ईरान में हिकु दौर जंग जो ख़ात्मो ऐं ॿी जंग जारी रखणु चाहे थी। तकरार जो को न को हल निकिरी ईंदो। पाकिस्तान खिते में अमन जे क़याम लाइ दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी कम जारी रखंदो। आपिर मुस्तक़बराई सां ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो रस्तो हमवार थींदो। परॾेही तर्जुमान टायरिसन अंद्राबी चयो आहे त बाबुल मंदिब में बहिरी जहाज़नि ते हमलनि जी मज़म्मत कयूं था। पाकिस्तानी बहिरी रस्तनि जे तहफ़ ऐं सलामतीअ जी हिमायत जारी रखंदो। फज़ा में अमन फ़ौज बाबति का तजवीज़ आई त पाकिस्तान जाइज़ो वठंदो। अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि जे महफ़ूज़ थाकनि ऐं सहूलत कारी जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां सोमालिया जे बचाव वारे वज़ीर जी क़यादत में आला सतही वफ़द जी मुलाक़ात। जीएचक्यू रावलपिंडी इलाक़ाई सिक्योरिटी दिफ़ाई ऐं सिक्योरिटी सरकार खे वधीक हथी ॾियण जे मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। आईएसपीआर मूजिबि दुरियन गॾियल सिक्योरिटी चैलेंजेस खे मुंहुं ॾियण लाइ अस्करी राब्ता वधीक मज़बूत बणाइण जी अहमियत ते ज़ोर भरियो। सोमालिया जे बचाव वारे वज़ीर अमन ऐं इस्तक़ाम खे हथी ॾियण लाइ पाकिस्तान जी मुस्तक़िल हिमायत ऐं हथियारबंद फ़ौज जे पेशेवराणे किरदार खे साराहियो। फील्ड मार्शल ख़िते में जटादार अमन जे क़याम लाइ हर मुमकिन सहकार जो अज़म वरिजायो।

0: صرف غلام کی ہے بادشاہ.
1: دل جانے دل جانے دل جانے.

0: सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी 12 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंद
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज गीत संस जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो
1: 9:30 जैक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो टॉर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिर्च ब्यूटी क्रीम
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हमराही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: कलंदर
2: खत्ते की बनी है
1: एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।